0: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: चल भाई उठ, बहुत लिख लिया।
1: अरे यार, तूने मेरा सपना तोड़ दिया।
0: अरे भाई सपना बहुत हो गया, टूरिस्ट हमारा वेट कर रहे होंगे।
2: माय लाइक यू।

जुन से रस्ते पर चल रहा हूं मैं, हर मोड़ पर धोखेबाज पा जाए, जिसका कोई मतलब नहीं बनता ब्लेम ही साला जाए। इब किसके लड़ूं किसका नाम मैं लेऊं भाई, लोग पूरा का पूरा गाना खा जाए। चोट मारे आजकल देख अपने करीबी लोग, नशा कर रहे बेच के।